गोसाई कुण्ड यही बारी में परे शिवाजी को दर्शन करना त्रिशूली में धारे न पोचाउँदो ठाउँ सम्म

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे क्या अपराध करते हैं?
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे।
1: सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है भाई? कहाँ ये साले?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर सम्पर्क 97497338798।
5: I'm home.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।